फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03265 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राण।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में, भजन होगा पंडित जय शंकर जी की आवाज में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुंदर भजन पेश की गए पंडित जय शंकर जी की आवाज में अभी आपने सुना। अगला भजन जो पेश किया जा रहा है एक सुंदर सा भजन होगा विपिन की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन प्रणव की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक सुंदर भजन सोनू निगम की आवाज में पेश किया जा रहा है। एक भजन जो हमारे बहुत से सुनने वालों भी पसंद करते हैं। आज

दर्शा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर।

की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर सा भजन की ओर हम आपको ले

सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में। आप जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप के आवास में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में 60 मिनट बैठित हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिचर का दिन 5 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सभी सुनने वालों को अनहेल खुडमोर का गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। शुभ वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड। और रेडियो SBS का

चूज समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी ठीक 12 का वक्त। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार पेश होगा रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों, यहां से हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। और आपको तो मालूम है हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है शुपी कैन के साथ, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। चलते हैं प्रोग्राम में पहला गाना की ओर, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में है समाया, ये झुक गया आसमान है। शेरों की बादशाह और संगीत का फरिश्ता मरहूम मोहम्मद रफी, कौन है जो सपनों में आया।

का गाना बस पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना आज की शनिवार की खास पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। पुरानी नख़्मे इस वक्त बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं चले फिल्म जिगरी दोस्त की ओर। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

यूएसबी इसके जरिए गाना बस पेश की गई पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आसरो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। जिगरी दोस्त फिल्म का गीत पेश हुआ है। चलिए प्रोग्राम में लता जी की आवाज में ये गाना।

गुप्ता जी की आवाज में ये गाना पेश की गए जंगली फिल्म का गीत अभी आपने सुना रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611 इसी तार की नंबर पर हमेशा आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। हेमंत कुमार

गाना जो पेश की गई स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में, घोड़ी बुलाए तेरा सांवरिया, फिल्म ताज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तो कल शुक्रवार था और कल साल अर्जुन में पार्टी था, जहां पर लाइव इतनी निदात रहेंगे ऑन स्टेज था, खासतौर पर हेमलता दीनदयाल, बस हेल गजेलग।

horen. Anuradha Portwell. Ga concert bij Johnny Valley hebben. Ticket. Jitana ticket. Bijna uitverkocht. Jakarap dikje. i-tickets.com. Hoe zeg je het? Kutje ticket. Jo baki raham. Aap jal se jal jaakar usi website ki zariye khareediye i-tickets.com website ki zariye aur aap khud dekhenge kitna ticket bik chuka hai baina and baina outverkocht Kumar Sanu en Anuradha Portwell aur khabar mila hai कुमार सानू जी का बेटी भी रहेंगे ऑन स्टेज पोडियम पर. एक खूबसूरत कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं. मोर्ख सोमवार 6 सितंबर इन आफास लाइव आम्स्टरडम. बस मिलकर कुमार सानू और अनुराधा पोर्टवेल का कॉन्सर्ट जो है देखेंगे कल पोर्ट ओपन 6:30 और कॉन्सर्ट शुरू होगा ठीक 7 बजे. बाकी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है i-tickets.com या तो रागा इवेंट्स वेबसाइट पर. मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में चले ये गाना की ओर.

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म धर्म वीर, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS

telefoonnummer 030-265-6060 है। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्म फागुन, उसी फिल्म का ये गाना, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म फागुन, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने सुना। नौ मिनटों ओवर 9:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आज शनिवार की सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

पूरे सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर, माइटी मुकेश प्रोग्राम में।

रेडियो SBS की सर ये मुकेश और लता जे के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना और होगा, उसके बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा। खबरें के बाद पुरानी फिल्में, संगीतों का प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश किया जाएगी। मत भूलना ठीक 12 बजे प्रोग्राम में अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया जाएगी। प्यार का मौसम फिल्म का नाम लता प्रोग्राम में।

0: में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: साथिया

ये खास गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अबकी बार ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है सही रामचंद्र का संगीत पर। गाना को आप सुनते ही रहना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना।

गुबार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। चलिए प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की ओर हम आपको ले चलते हैं। दवाई

रेडियो में इसकी सर ये गाना बस भूपिंदर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की सर ये। चलिए प्रोग्राम में अगली बार मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

की गई। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में अब की बार ये गाना आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: किशोर कुमार के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
3: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
4: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
3: 6th of September, अनफॉरगेटेबल 90s।
4: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
3: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
0: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

नाम धोखा। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की सरिये जो पेश की गई एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। फिल्म का नाम होगा धूप। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है। हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में फिल्म का नाम धूप। उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

हरि हरन और शरिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शमिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एन सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो वेस में इसकी सर ये सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं, जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर।
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है, इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है, दिल मेरा चाहत का तलब

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। निवहैन शहर से समस्त दुखित परिवार कामता और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत बुधवार 2 तारीख सितंबर 2 सितंबर 65 साल फैफन 60 साल की आयु में स्वर्गीय माता और पिता हरि नारायण कामता और कृष्णावती गजराज के बेटा, 3 भाई और 2 बहन विजय शर्मा कामता, हेम शर्मा, श्री पूज्य पंडित आनंद कामता, एम और आशा के भाई, 2 छोटकी के बरकू, 1 बहनोई के सार, सभी लड़कन के मामा आजा और नाना, गीता रामहित कामता के पति, सभी लड़कन के पिता, निवहैन शाकलस्टेड 78 का रहने वाला दीप शर्मा कामता जिन्हें लोग रॉय के नाम से पहचानते थे और निवहैन में सोनमार्ग बदरैफ RR का मालिक था, इनका मृत्यु हो गई है। अर्थिक आज शनिवार 5 तारीख सितंबर, फंडाख 7 5 सितंबर, स्मिडक्स ओम 4 शाम 4 के वक्त क्रेमेटोरियम सान स्थात विबौत स्त्रात 282 सांदाम शहर में दाह क्रिया किया जाएगा। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है।

12 बजकर प्रोग्राम में 12 मिनट वेटेड हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इसी तरह से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सुनने वालों हर एक काम काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है जो 24 पर दाग पर एक बार होता है 024 पर दाग भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और वो भी रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए आप मेल और हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप आप कर सकते हैं। 13:12 चले यहां से हम आपको ले चलते हैं। हर शनिवार की तरह आज शनिवार भी कुछ लोकल नगमे की ओर लोकल टाइम प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप निकला हुआ है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए एक

सुनने वालों, कल जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाले हैं आफास लाइफ एम्स्टर्डम शहर के अंदर में। कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और साथ में होगा कुमार सानू जी के बेटी भी लाइफ ऑन स्टेज रहेंगे एक जबरदस्त कॉन्सर्ट शो पेश करने के लिए। अपना टिकट आपने नहीं खरीदा है तो हम यही कहना चाहेंगे, कुछ टिकट बाकी रह गया है। अतिस बैना हेलमाल आउट फॉर कोख्त। आप खुद जाकर देखिए iStripTickets.com वेबसाइट पर, हजारों टिकट बिक चुका है। एरसाइन नोख एंकल टिकट्स, तो जल कीजिए अपना टिकट आप जाकर खरीदिए। जब ही आप कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे, जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाले हैं जो ला रहा है रागा इवेंट्स। iStripTickets.com वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट पर आप जाकर खरीदिए। एडसाइन नो हैंगलेट

आज शनिवार की खास दोपहर का प्रोग्राम में ये गाना पेश की गई है। एक बार फिर से आपको वेबसाइट दिया जा रहा है iStrapeTickets.com, जहां पर आप जाकर कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का कॉन्सर्ट का टिकट खरीद सकते हैं। ज्यादा टिकट नहीं है, आप खुद जाकर देखेंगे iStrapeTickets.com वेबसाइट पर कितनी टिकट बाकी रह गया है। डरसाइन एंकल कार्चेस एंकल टिकट्स जो आप खरीद सकते हैं। हाँ, जहां तक हमें मालूम है फंदाख इस हेलमाल आउटफरकोख्त टिकट, कुछ टिकट जो बाकी रह गया है हम देख रहे हैं जोर तोर से बिक रहा है, तो जल्द कीजिए। जब ही आप कल कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल का खास कॉन्सर्ट देखना चाहेंगे। रेमोंड

आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में थ्री मिनट ओवर हॉल ऑफ फेम अनहेल होना बेटा धूप का मौसम है खूबसूरत गाने नखमे रेडियो SBS पर।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में ये गाना की ओर मेरेंगे स्टाइल में, ओ दिलदार बोलो एक बार। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है दया बे प्लस रेडियो के जरिए ऑनलाइन देश के अंदर में मेड इन नीदरलैंड में और प्रोफेसर साइड होलैंड में अपना डे अभी

और सभी सुनने वालों की सेवा में आस रहा हूं। उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है प्रवीण की आवाज में। गाना को आप सुनते ही रहना, आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है।

दोस्ती मेटली। अभी आपने सुना खासतौर पर परवीन की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई ये खास गाना जो अभी आपने सुना लाइव के जरिए रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है खासतौर पर लोकल टाइम का प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में उबर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। उबर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई उमर की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं और बहुत से सुनने वालों भी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी प्रोग्राम सुनते हैं।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं। वीकेंड है, छुट्टी का दिन है। प्रवेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है, दिल है कि मानता नहीं।

प्रवेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की इस लोकल टाइम का प्रोग्राम भी आसरा उम्मीद है कि ये गाना आपने सुना दिल है के मानता नहीं बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में संजय जोधा की ओर हम आपको ले चलते हैं और अब की बार गाना पेश होगा

0: जो है खत्म समाप्त होने पर आ गई है। कांखरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ मुझे इजाजत और आज्ञा दीजिए।
1: परवाने से परे चला जा,
0: बस हम आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशली क्रमलाल, दू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: Churakedu Mira, Guria Chili. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyar Te Moet Zeker Tiho, Don't Say No, gezongen door Shabbir Kumar.
1: Mijn tum se pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: अलिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ वादा फैदर में शैलेंद्र सिंह मैथ आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Preetam komt het volgend liedje via Radio SBS in het programma Geeton Ke Leher. Uit de film Tadap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। दैट वॉज आउट द फिल्म लुक्का छुपी, ओरिजिनेल इज आउट द फिल्म अफलातून। In het programma Gitoon Kelleher via Radio SBS is het volgend liedje Tera Chehra Kitna Suhana Lagta Hai, gezongen door Jagjit Singh. U luistert naar Radio SBS via de website www.radiosbs.nl.

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साथ ना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा एंड इस गजंग दो सुनीति चौहान एंड अलका याचनिक. गाओ दा फेदर मेट uit de film दिल धड़कने दो, इस लीजिए गल्ला गुड़िया.

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

एली रे एली, क्या है ये पहेली? ऐसा वैसा कुछ तो हुआ है सहेली, ये शायद फिल्म यादें. En het volgende liedje in het programma Gitaan Kelleher via Radio SBS is de titelsong van de film Janam Sam Chakro, gezongen door Anu Malik en Hema Sardesai.

कुमारदु फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के ये समाये नजारे खो गए हैं, हम कसम से तुम्हारे हो गए हैं। En uit de film Durwa 2 komt gezongen door Anu Malik en Neha Kakkar. Uchiha Building 2.0.

हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खुशहुदूर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयुध फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खुशहुदूर अलका याचिनिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इस फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन het programma Gietonke Leher via Radio SBS.

आज रपट जाए तो हमें ना बुलाइयो इस फिल्म नमक हलाल इस गुस्सा दौर किशोर कुमार एंड आशा भोसले। Uit de film Pagelpanti komt dan het volgende liedje via Radio SBS. Gezongen door Yo-Yo Honey Singh komt Tumka.

हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा।

0: चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। हुसामुद्दीन जगजीत सिंह एंड अलका याचनिक heeft u gehoord uit de film Terkieb. En uit de film Sare Sipne komt opnieuw gezongen door Alka Yachnik deze keer. Zara zara si baate, teri mujhko yaad aati hai.
1: Haseen lamhe, shareer lamhe, sharmile lamhe, jhijakte lamhe, pighalte lamhe, dhadakte lamhe. मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान न मिटते हैं न हल्के होते हैं।

0: nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं राघा
2: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: राघा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.